0: 那娘婆你来真看真真基地套了身穿密码起的蓝袖跟他有钱的雪儿袖跟这些不准蓝他雪山男孩袖跟今天看感情袖跟他这是老了但准了纯情黑白袖跟他这些呢变成了困难去看不得成就孤男吧推荐了学给马斯张巴点了他西藏这些学莲花学给他开心学给他心挪不挪不给他藏式服装学给他成名了日益学给一笑而过学给那么听见苍蛮也能推荐了学给你了
1: 中午集中了，但今早上了，上午稍微立正五处不当，俺们我当然你们听着，当然呢，开玩笑，中午集中了，对不一下了，可都心都急。
0: 太艰难了，对不起，你们听着了。下面城里区别苏县的，那等进来的岭南北，这些扬州西不的。
1: 老当多这些扬州的，这里上午稍微下午是你今早上了，但。ये जो मैं की तो मरा लगता है शीत ज़्यादा तो ना जो मौसम तो ले सेम बैठी ने लुचे तो पियूं इन क्या लागू ले खासों
0: नॉलेज तो जाना
1: अंगन तो लूंगी की उ